उस वेले बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बीड़ां दी लिखाई कर रहे सन, पर जदों उन्हां नूं अमृतसर तों आए एक गुरु दे सिख ने हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दी गल दसी तां उन्हां ने कलम छड के दोबारा फिर तेग चुक ली अते जख्मी शेर वांग दहाड़ उठे।

मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह।

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैण, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे, ते जदों तीजा पैर हुंदा

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाए। साथ सगत बोलो श्री टुरते हुए पिछली प्यारी अदा।

के पातशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना व्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावन।

फल लगता है टैणी नू, ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए, गुरु नानक दा रूप बन गए सत्संग।

निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, निर्धन को पाले, हाय हाय, निर्धन को पाले, गुरु नानक दे प्यार विच कलगियां वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाए खालसा रहनी दा नाए खालसा अमली जीवन दा नाए खालसा गुणा दा नाए उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह का आप जी ने चारे वीर बार सरवन किया है केवल बोल के लंघते हैं अज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लगा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लगा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारा चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करन वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सात संग आज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ये पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण सारे कृपा करो

一刷子撒。साढ़े अंदर एक मन है, एक आत्मा है। मन का सवाल लेना लेना, आत्मा का सवाल वंडना वंडना देना। जे तुहानू शौक लग जे, शौक चढ़ जे, प्रसादे पकावा उत्थे जाके वंडा, फलानी चीज करो लवा उत्थे जाके वंडा, थोड़ा कुछ पेड़ दसवंध फरूट लवा वंडा, ये कते सुभा बन जे, समझो आत्मा चढ़दी कला च जा रही है। हुण देण ते खुशी आती है, शांति मिलती। जब तक सुभाए खोना खोना खोना, चंचल मन बलवान है। इसी एक पौड़ी है जिदा इस नक्शे नाल तलक है। कहंदे ओ खालसा जिदी आत्मा बलवान है, जिनू हुण देण ते खुशी हुंदी, किसे नू पालण ते खुशी हुंदी है।

मैं आया था सा संसार में सेवा सिमरन परपकार करन ली, पर मैं ता कोई भला कर्म ना कर सकिया। मैं बना के रखनी सी नाम जपन वालियां दे नाल, मैं बना के रखनी सी तेरे नाल हे वाहिगुरु। मैं ता किसी नाल भी ना बना के रखी, मैं ता पदार्था नाल ही बना के रखी, इसलिए राख लियो हुन मैं तेरी शरणा। मंदे चंगे जेहो जे हां वाहिगुरु, तू सानू अपने चरणा विच रख लै, बख्श लै।

मैनू ए भोली गया कि ए शरीर ते अगना है, ए शरीर एक मिट्टी दी थेरी, मैं इस नू अमर समझ के सब कुछ करता रहा, तैनू विसार के पदार्था वाल लगा रहा, अमर जान संची ए काया पर ए मिथ्या काची गगरी, ए ता कच्ची गागर है, कच्चा घड़ा है, ए कितना कुछ साबित रहेगा, ए ता तनका लगेगा ते फौरन टूट जाएगा, उच्चारण करो श्री वाहेगुरु, इसलिए मेरी भूल है।

आशा रूपी श्वान बैठे जिदे नाल तृष्णा ते आशा दिया दो कुतिया भी नाल हन, क्योंकि मनुख सवेर तो शाम तक अपने दंदिया विच ज्यों ज्यों पौकण लगदा है, सारा दिन बीत जांदा है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ए सवेर तो शुरू हुंदा है अपने कार विहारा विच खचत, ते रात तक इस नूं तेरे नाम जपन दा कोई पता नहीं होंदा। इसलिए धन गुरु नानक पातशाह कहंदे ने, एक सुवान दोए सुवानी नाल पलके पौकै सदा बया। आशा ते मनसा दियां कुत्तियां इस दे अंदर हन, जो इस नूं तेरा नाम भुला दे दियां हन। कदी ओ कम है कदी उधर तोर दे दियां, कदी उधर तोर दे दियां हन। ये साडी बिरती है, उचारण करो श्री वाहेगुरु। कूड़ शुरा मुठा मुरदार, तानक रूप रहा करतार, मैं पत की पंद ना करनी की कार, हो बिकड़े रूप रहा बिकराल। हे वाहेगुरु, साडा ये हाल है, पर हुण किवें साडा पार उतारा होवे। तेरा एक नाम तारे संसार, एक नाम ही तेरा तार सकदा है। ते ओ अरदास कीतिया भाई प्राप्त होंदा है, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे दया करो, किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। आखरी तुकां विच धन गुरु नानक पातशाह दस रहे हन के नाम तो बिना

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

तेरी समर्था महान है, करता पुरख जू है, सब कुछ कर सकना है। ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैथों कुछ भी नहीं हो सकता। जब कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा, अरदास तो हो सकती है। और सच्ची गल जानना, अरदास च खड़े हो जाना ही रब का काम है। ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए, ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में। और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण, मस्तक न्यों जाए, इहदे दो अर्थ हुंदे ने। हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना, इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने, इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन। आप करता पुरख हो, इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, यह हथ बज गए, यह हथ तेरे सामने जुड़ गए, इन्हां तो कुछ नहीं होना। एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा है ना, किसी दूसरे का अभिवादन करना हो, आदर करना हो, भी हथ बनने। लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना, बल्कि जिसले मत्था टेक देने हैं, इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने। एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया, लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने आ सी, मत्था टेकने आ पातशाह, इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं, इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना, मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता, मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने, मेरी थां सोचो भी तुसी, मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी, ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास च जुड़िया होवां, अरदास अर्ज दाश्त बेनती कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, मैं केवल अरदास च जुड़िया होवां। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। ये वखरी गल है, मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है, नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए, तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरे लिए एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श, फिर मैं अरदास च लगा होवांगा, हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु का होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं, प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना, ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है, ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा, पसीने पूंजदा। सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया, बंदा केवल नबेड़ सकदा, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा। वड्डी वड्याई अचरज सोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी। कार्ज आया रासे, नानक कहो गुर पूरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। जदों सतगुरु कार्ज करना आ जावे, उस वेले कार्जा च शोभा हुंदी, ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा। ये गल वखरी है कि अरदास करने वाला बंदा कार्य की संपूर्णता तो बाद यह नहीं कहता मैं कम नबेड़ दिया, बल्कि वह तो यह कहता है।